परम सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों आप जी रात्रि वेले दे दीवान दी हाजरी भर रहे हो। सतगुरु जी ने जो गुरु सिख ले नेम बनाया है उस बनाई हुई मर्यादा दे अनुसार आप जी ने सोदर रहराज साहब जी दा पाठ गुरु सवारियां तो सरवण कीता है। हजूर दे चरणा विच अरदास हुई वितर हुकम साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी खुरां दा उचारण कीता होया आप जी ने सरवण कीता है। तू काहे दोलह प्राणिया तुद राखेगा सृजनहार। बड़े प्यारे ढंग नाल हजूर साडे अंदर नूं टिका बख्श दे। आओ प्यारो जिथे आपां हर बुधवार पिछले कुछ समय तो गुरु नानक साहब जी दी पावन पवित्र बाणी जपजी साहब जी दी विचार करदे आ रहे सां। छे पौड़ियां हजूर दी पवित्र बाणी दियां जितनी को मत गुरुदेव ने बख्शी उस अनुसार विचार कीती गई। मता कोई ए समझ लवे कि ए फाइनल ए जो कुछ आपां कह दिता बस इस तो अगे कुछ नहीं। मनुख दी मत थोड़ी है ओ असगा सागर है। जिवें हुण एक कोई समुंदर विचों लोटा पानी दा भर लवे ते ए कही जाए कि मैं सारे समुंदर नूं पानी दे नूं भरे हुए नूं लोटे विच पा लिया ते ए मनुख दी अज्ञानता है। जितनी कु तैनू लोड़ सी तू केवल अपने भांडे मुताबक भर सके ओ तां अजे असगा है। तेरे वर्गे पता नहीं कितने कु ओदे कोलों दाता लै सकदे। कहण तों मुराद जितनी कु विचार कीती है ए जिन्नी कु भांडे नूं गुरु ने सूझ पाई उन्नी कु आपां विचार कीती है। पर ओ इस तों अगे होर बेअंत है। आओ साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता महाराज जिन्हां दा आगमन पूर्वी पिछले दिन बतीत होया जिन्हां दे सपुत्रां दे साके भी इसे मकीने दे अंदर आए ने। मैं एतवार अर्ज कीती सी हजूर दे चमकौर गढ़ी दे साके ने आरंभ कीता इतिहासक तथां दे नाल कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज 19 दिसंबर दी रात नूं आनंदपुर तों चले ने। सतगुरु सरसा दे किनारे 20 दिसंबर दे अमृत वेले पहुंचे ने। हजूर ने सरसा पार कीती परिवार तीन हिस्सों विच वंडिया गया। इस तों अगे गुरुदेव रोपड़ आए ने 20 दी रात इत्थे टिके ने दिन ते 21 दिसंबर दी रात शामां वेले मेरे हजूर चमकौर गढ़ी विच पहुंच गए। ओ कच्ची हवेली सतगुरु उस हवेली अंदर अपना टिकाणा कीता है। उस रात सोदर रहराज साहिब जी दे पाठ कीते गए। कई दिनां दे भुखे भाणियां नूं अज जल पानी मिलिया है। हजूर ने छकिया गुरु के सिखां ने छकिया। रात बत्ती तो ही मैं अर्ज कीती कुछ विद्वान ए भी कह रहे ने कि धन गुरु कलगी वाले सच्चे पिता सारी रात उस अकाल पुरख दा शुकराना करदे रहे। गुरु के सिखां दी अपने हथी सेवा भी कीती। आओ प्यारियो उस तो अगे जिवें ए वरतांत वापरदा जितनी कुछ सोच गुरु गोबिंद सिंह जी कृपा करके बख्शणगे आपां इसे इतिहासक लड़ी नूं अगे आरंभ करिए। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी।

वचन सुनाया, कह लगा बाबा एक साल पहला दी गाले अपने बापू नल खेतां विच गया वा, जिमीदारा करने हां ते उस वक्त हाकमां दे घोड़े आए ने, साडी कुछ फसल अजे जमीन विचों निकलदी पई सी, कुछ जमीन विचों निकल के डडरी अद्धी कच्ची ते अग्गी अद्धी पक्की सी, कुछ फसल पक चुकी सी, हाकमां दे घोड़िया ने सारी फसल नू जमदी हुई नू भी डडरी नू भी पक्की नू भी एक वड्डे तो सारी नू उजाड़ के रख दिता। ते उदन दी मन विच आवाज आई, बूढ़िया ए ता हाकम ने इन्हां दे घोड़े खेत विच जमदी हुई फसल नू डडरी हुई फसल नू पक्की हुई फसल नू तबाह कर सकदे ने, मौत ता बड़ी बलवान है, हो सकदा कि मेरी कच्ची फसल मेनू बचपन विच लै जाए, हो सकदा मेनू डडरिया जवानी विच लै जाए, पर बाबा बुढ़ेपे तो बाद ता मौत अवश्य। इस करके उदन दा समझना वा कोई ऐसा मिल जाए जेड़ा कोई प्यारे प्रभु दी बात सुना के मैनू उस प्यारे परमेश्वर दे चरणा नाल जोड़ के मौत दा पहि दूर कर दे। जदों भाई बूढ़े ने इन्ने बचन कहे, भाई मनी सिंह लिखदे ने उस वक्त हजूर ने कोट छाती ना लाया ते नाल इक बचन कहा सी, कहन लगे पुत्तर उम्र तेरी बच्चियां वाली है, गल्लां तू बुढ़ियां वालियां करना, 1500 ते 18 सन तो इस बच्चे दा नाम पै गया सी बाबा बुढ़ा जी। ए शब्द सुन के ए बचन सुन के कहा, उम्र बच्चियां वाली गल्लां तुसी बुढ़ियां वालियां करदे हो, साध संगत एक वारी गुरु नानक ने घुट के छाती न लाया, पता नहीं बाबे बुढ़े दे अंदर की कृपा वरती, 1518 तो लैके 1631 तक बाबा बुढ़ा गुरु नानक दे गीत ही गाउंदा रहा। 113 साल एक गलवकड़ी ने इन्नी कृपा कर दिती। मैं अगे तुरा, मेरे गुरु नानक साहब ने करतारपुर बनिया रावी दे किनारे दोधे जिमीदार दी जमीन दे अंदर पिंड बनिया। इत्थे दोधे ने कहा सी, मैं संखेप विच अर्ज करदिया, जदों कृपा कीती गुरु नानक ने कहा सी दातिया मैं पिंड वसावांगा, पुछया केड़े नां ते, कहन लगा साईयां नानकपुरे दे नां ते। ते मेरे साहब ने कहा सी दोधिया जमीन किदी है, कहन लगा करतार दी, पुछया नानक किदा, कहन लगे करतार दा, फिर कहन लगे जे जमीन ते नानक करतार दा है फिर नानकपुरा नहीं पिंड वसेगा, उस नां ते जिदी दात में लईए पिंड वसा तू करतारपुरा। इथे करतारपुर वसाया, सतगुरु ने अपने जीवन दे 18 साल करतारपुर वाही कीती है। खद्दर दा परना मोढे ते होना, खद्दर दी चादर मोढे ते, सिर ते मोटा खद्दर दा परना, कदी देखो उन्हां दिनां नूं सिखां ने खेतां विच कम करना ते मेरे गुरु नानक बाबा जी आप विच शामिल होना, ते जदों घर आउणा मंजी अलाणी ते बहना ते सिंघां ने कोल बह के निरंकार रूप गुरु नानक तो बचन सुनने। सतगुरु ने 18 साल इत्थे हल वाया ते भाई गुरदास ने इसे गल नूं कहा। फिर बाबा आया करतारपुर, भेख उदासी सकल उतारा, पैर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा, सोदर आरती गाविए अमृत वेले जाप उचारा। धर्मशाला कैम हो गई, बाबा बुढ़ा भी पिंड रमदास तो अपने माता पिता नाल रमदास चले गए, उथों करतारपुर पहुंच गए। गुरु नानक साहब की कृपा अथा वर्षी, संखेप विच अर्ज करा, जितन अंतले दिन गुरगद्दी भाई लैणे नूं मिलनी है ते जन्म साखी वाले ने कुछ बचन बड़े प्यारे सांभे ने। ओ कहिंदा गुरु नानक साहब ने धानकां वाला रूप बनाया, हाथ विच सोटा पकड़िया, लम्मा चोगा पा के शिकारी कुत्ते लै के जंगल नूं तुर पए, पिछे संगतां तुरिया। ओ कहिंदा लिखदा जन्म साखी वाला, पहला हजूर ने खीरियां दी बरखा कीती, सोने चांदी दी बरखा होई, रुपईयां दी बरखा होई, लोक पैसे लै के पिछा मुड़दे रहे, इस साखी विच भी रमजे। आखीर ते मुकदी गल की, एक भाई बुढ़ा ते दूसरा भाई लैणा, इन्हां ने ना हीरे देखे ना मोती तके, बस नीवी पा के गुरु नानक जी दे पिछे पिछे तुरे गए। सतगुरु रुक गए ते बाबे बुढ़े वल इन्हां ने सोटा उघारिया, ते ओ तां इत्थों तक लिखदे ने, बाबा बुढ़े जी दे मोढे दे उत्ते सतगुरु ने डांग भी मारी,

ओहम पातिक बिना सह गुर अमरदास परसी सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसी है ध्यान लइए पौ मुक है गुर अमरदास परसी है अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जो तो रहै जा सुमंत्र मानवैल है जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठ मिले कन हर बूंद बसोर मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै

परम सम्मान योग जुग हो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाहे मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों हजूर दी पावन पवित्र इलाही बाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारा आप जिया ने सत्कार योग भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी खुरां पासों सरवण कीतियां ने कल दा दिन जो बतीत होया है कल दे दिहाड़े धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे गुरदेव दा गुरगद्दी नशीनी पुरब से ते गुरु अमरदास महाराज जी दे इस पुरब नू आपा अज मना रहे हां। गुरु नानक साहब जी दे इस घर दे अंदर जदों आपा इतिहास नू गुरमत नू पढ़ने हां ते एक चीज बड़ी विलखण सानू जिहड़ी नजर आउंदी है इत्थे गुरु दी कृपा ते निर्भर करदा है। 7 साल दा बजुर्ग बाबा भी जे किते गुरु के चरणा भी जुड़ के सेवा करे ते जिस समय लोग कहिंदे ने 70-72 साल दी उमर विच बंदे नू सूझ कोई नहीं शब्द वरतदे ने इह 70-72 गया 12 साल गागर ढो के 72 साल दा बजुर्ग भी सिख तो गुरु बन सकदा है। यही विलखणता है कि इत्थे 5 साल ते 3 महीने की बाल उम्र गुरु हरकृष्ण साहब जी वो भी गुरु बन सकते ने ते कृपा गुरु करे तो 72 साल का बजुर्ग भी गुरु बन सकता है। आओ गुरु अमरदास जी दे पावन पवित्र इतिहास की और बाणी की विचार आपने करनी है जड़ा अज का दिन गुरगद्दी पुरब आप मना रहे हैं इस दी विचार इस दिन दे संबंध विच गुरु कृपा नाल आपां विचारने कृपा करके जितने भी बैठे हो ना एकाग्रता जरूर बख्शिया जे कोशिश करो इस खिंडे हुए मन नूं गुरु अमरदास जी दे चरणा विच अज टिका दईए। जे तां बुद्धि तारक केवल तर्क करन वाली नाल सुणांगे ते याद रखना वह कहा होया केवल तर्क की बिरती वाला लगेगा ते जदों प्रतख गुरु नूं हाजर नाजर जान गुरु के बचन सरवण करांगे ते सतगुरु गुरु अमरदास की कृपा वरसेगी। विचार आरंभण तो पहला सतगुरु की बख्शिश कीती हुई गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा अमरदास जी का जन्म पिंड बासर के जो अजकल जिला अमृतसर के अंदर है सन 1479 नूं बाबा तेज भान जी दे ग्रह विखे होए। बाबा अमरदास जी गुरु नानक साहब जी तो उम्र करके केवल 10 साल छोटे ने। गुरु नानक साहब जी का आगमन सतगुरु का प्रकाश सन 1469 नूं राय भोए दी तलवंडी ते होया गुरु नानक साहब जी का ते बाबा अमरदास जी का प्रकाश इन्हां दा जन्म आगमन शब्द वरत लईए कि पिंड बासर के 1479 नूं होया 10 साल बाबा अमरदास सतगुरु गुरु नानक साहब तो छोटे ने। बाबा अमरदास जी दे पिता दा नाम तेज पान है। बाबा अमरदास जी 4 भरा ने ते अमरदास जी सब तो वड्डे ने।
मैं शब्द वरत्या बाबा इस करके वरतिया, अजे वह गुरगद्दी ते विराजमान नहीं। बाबा अमरदास सब तो वड्डे ने, छोटे तीन भरा ने, ते इथों तक यह कारोबार अपना जिमीदारा भी पिंड विच करदे सन। उस तो इलावा महिमा प्रकाश विच तां इह भी लिखिया रेशम दे कपड़े दा वपार करदे ने। कहण तो मुराद वपार भी करदे ने, दुकानदारी भी करदे ने, ते बाबा अमरदास जी का पूरा परिवार जिहड़ा जिमीदार।

सम्मान योग चवर तखत दे मालक परमेश्वर दा खिरदा स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सोभाए मान होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागी हो इलाही गुरबाणी दे कीर्तन नाल सतगुरु नानक देव बाबा जी महाराज उन्हां दी बख्शिश कृपालता लै रहे सी। आओ जितने को सोज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करके बख्शनगे गुरु बाबा जी दे पवित्र जीवन और गुरबाणी दी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभन तो पहला कृपा करके एकाग्रता बख्शो, बच्चियां नूं भी चुप करा के कृपा करके एकाग्रता दा दान बख्शिया जे। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द सरवण किया है बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै सहज रंग रच रहया अहमिस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गया। ए शब्द दी रहाओ दी तुक सी। पहलियां पंक्तियां सन गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै कर करनी कस पाइए पाठी भवन प्रेम का पोचा इत रस अमेओ चुआइए। ते इस शब्द दे अखीर दी तुक सी कि गुरु नानक साहब एक जोगी नूं संबोधन कर रहे हैं। कहो नानक सुन भर थर जोगी, इहदा मतलब है शब्द किसे जोगी नूं संबोधन करके उच्चारण किया। पर चेते रखना यह शब्द केवल उस समय तक उस जोगी दे जीवन तक सीमित नहीं सी। यह शब्द अज भी गुरु के सिखां नूं एक चेतावनी दिंदा है ते नाम रस नाल जुड़न की प्रेरणा दे रहा है। शब्द असां सुने बाबा नानक जी नूं जोगी मिले है। इन्हें गल कीती है लिव दी, गल कीती है अनहद शब्द दी। ते जोगियां दे मत मुताबक उन्होंने प्याला भर के नशे का पेश किया, शराब का पेश किया। ते बाबा जी पुछदे ने ए की, कहन लगे एक वारी पी लईए ते परत के दिन चढ़े तक एदा नशा उतरदा नहीं। इन्नी टेक के समाधि लाई दिए कि शरीर नूं थकावट भी महसूस नहीं हुंदी। ते बाबा जी कहन लगे भलियो ए प्यार किवें कीता जे। ध्यान देना, कह लगे भांडे विच पानी पाया सी, पानी पा के विच गुड़ पाया, गुड़ दे विच किकर दे छक पाए ने, अमवे दे फुल पाए ने। पहला एक कच्चा रस तैयार होया, परत के अग दी भट्ठी ते भांडे नूं रखिया ते इहदे चौगिरदे आपां भांडे उपर होर बखल फिट कीता, उहदे विच नाली लाईए ते भांडे उपर जिहड़ा बथल फिट किया होर भांडा फिट किया ते उहदे चार चफेरे असीं मिट्टी का पोचा फेरिया ते थल्लों अग बाली ते जिहड़ा इहदा अरक निकलिया इहनूं असीं रस कहिंदे आ। एक वारी पी लईए ते रात भर इहदा नशा उतरदा नहीं। इशारा सी शराब वल। बाबा जी कहन लगे शराब का नशा नहीं, वह रस की होए जेड़ा शाम नूं पीता होवे ते सवेरे उतर जाए। ते कहन लगे मैं उस नाम रस दे प्याले नूं पी चुका हां ते इहो जिहा आनंद अंदर बन गया है कि चेते रखो उहदा नशा उहदा सरूर उहदा रस कदी भी उतरदा नहीं। ते जोगियां ने पुछया ए रस किवें तैयार हुंदा है। ते बाबा जी कहन लगे जोगियो गुड़ कर ज्ञान
परमेश्वर दे बख्शे हुए ज्ञान नू गुण बनाया ध्यान कर पावे ओदे नाम विच ध्यान जोड़ना मैं इनू अमरवे दे फुल बनाया कर करनी कस पाईए ते उच्चे आचरण नू किकर दे सक बना दिता है पाठी भवन आ शरीर नू पठी बना दिता है इस मोह दी मोह नू मैं साड़न तुरिया वा पाठी भवन तुसी मिट्टी का पोचा देंदे हो प्रेम का पोचा ते एदे विच्चों शराब नहीं एक रस अमेओ चवाई है एदे विच्चों अमृत दियां बूंदा डिगदियां एक रस अमेओ चवाई है कह लगे फिर बाबा हे जोगी मन मत वारो मन मस्त हो गया नाम रस पीवे सहज रंग रच रहा एनस बनी।

मुंडन नीको ठाकुर देसा ना खाऊं जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म भया परणवत नानक तिनकी शरणा

जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखश फारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज, सुदामा अपदा ते राखिया, गणका पड़त पूरे ते काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए,

शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नवनिद दरियाओ जन्म हम कालख तोवे सुकहु तल गुर सेविए एहन सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै।

तुद जिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। तुद जिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। गुरु प्यारी परम सन्मान योग सात संगत जी, आप जी वड्डियां भागां वाले हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन गोद विच बैठ के अपने जीवन दे कुछ पल सफल बनाने दा यतन कर रहे हो, वडभागी हो। आओ जिथे तन करके सतगुरु दे चरणां विच हाजरी लवाई है, मन दी हाजरी

इतनी कशिश अमृतसर ले क्यों है, सिख जगत के अंदर तड़प इतनी अमृतसर दे ले क्यों है, और मर मिटण की भावना इतनी क्यों है। मैं ते इतनी अर्ज कर रहा, जेड़े शहीद हो गए उसे काबू च है, चारों पासे चिर गए, पर खिमा करनी खुल दिली नाल आजादी दे नाल शहीद होना आए ने। जिस कौम ने इस तरह की खुली दिल नाल आजाद होन जो है शहीद होन लई आन, खिमा करनी उस कौम नू गुलाम नहीं रखिया जा सकता। कौम जीवदी है, जीवदे मनुख की यह पहचान है, उसके अंदर गर्मी आती है। मैं फिर अर्ज करा, मुर्दे की की पहचान, ठंडा हो गया, हाथ पैर ठंडे हो गए, तलियां मलदे ने, गर्माश आवे, गर्मी आवे, तो मैं अर्ज करा तलियां मलन की लोड़ ही नहीं, इतने गर्मी मौजूद है, इतने जिंदगी मौजूद है। सतगुरु का दिता हुआ वाक, सतगुरु के दिते हुए वचन, उन्होंने सूरवीरता अंदर खालसे दे इस ढंग की पैदा की हुई है। ये जीवदी जागदी कौम है, कबरां नू गुलाम रख सकते हो, मुर्दियां नू गुलाम रख सकते हो, जीवदी जागदी कौम नू तुसीं गुलाम नहीं रख सकते। ये हकीकत है, बहुत वड्डी जो है सच्चाई है। तो पावन पवित्र वाक आया, रामदास सरोवर नाते, राम दे दासां दे सरोवर दे भाव, गुरु रामदास जी महाराज का बनाया हुआ है सरोवर, ते राम दे दासां दा सरोवर, उहदे च जद इशनान कीता, उहदे जो है नहाए। हां जी, अज तक जितने पाप कमाए सन, ते पाप कहने किसनू कहोगे, पाप पाप ते पुन दी बड़ी चर्चा है। ते मैं अर्ज करा, इस्लाम जिसनों पाप कहता है, हिंदू धर्म उसनों पाप नहीं कहता, हिंदू धर्म जिसनों पाप कहता है उन्हों ईसाई पाप नहीं कहते, ईसाई जिन्हों पाप कहते उन्हों यहूदी पाप नहीं कहते। हजरत ईसा शराब पी लेंदे सन, गऊ दा मांस मुहम्मद साहब खा लेंदे सन, मछली स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है खा लेंदे सन, मैदान जंग विच महाभारत की जंग विच श्री कृष्ण झूठ बोल लेंदे सन, और उन्हें कहा युधिष्ठिर कह दे अश्वत्थामा हथो मर गए। हुण किहनूं पाप आखोगे, की पाप है, किधरे कोई अवतारी पुरुष झूठ भी बोल लैंदा, किधरे कोई गऊ भी खा लैंदा, किधरे कोई मछली भी खा लैंदा, किधरे कोई शराब भी पी लैंदा। ते कहिंदे धर्म ते ओही है जिहड़ा निर्मल कर्म ते खड़ा होवे, ते जिहड़ा धर्म है निर्मल कर्म ते नहीं खड़ा वह धर्म पखंड है। सतगुरु ने आप कह दिता है, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जा दासी लूटे, निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमत सिमरत जित छूटे। केड़ा धर्म पखंड है जो मलीन कर्मा ते खड़ा है, कर्म धर्म जिन्ना कर्मा दे ते धर्म खड़ा है, केड़े कर्मा दे ते फोकट कर्मा ते व्यर्थ दे कर्मा दे ते, तो साहिब कहिंदे उते पखंड है। पर हुण इत्थे निर्णय करिए, निर्मल कर्म केड़ा है, फिर केड़ा पवित्र कर्म है, किसनों निर्मल कर्म मनीए, क्योंकि दुनिया भर दे अवतारी पुरुष ऋषि मुनि संत जना दे निर्मल कर्म ते मलीन कर्मा दी व्याख्या करी, ते सारियां दे निर्मल ते मलीन कर्म मिलदे ही ने, भिन्न भिन्न। किनू पाप आखोगे, किनू पुन आखोगे, तां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दो पंक्तियां विच निर्णय कर दिता है कि निर्मल कर्म केड़ा है ते श्रेष्ठ धर्म केड़ा है। लोकी मुहावरा धार्मिक दुनिया बड़ा गलत वरदे ने, बे शुद्ध हिरदे नाल बाणी पढ़ो, जे हिरदा ही शुद्ध हो गया तो बाणी की पढ़नी, बाणी इस वास्ते पढ़नी हिरदा शुद्ध हो, इंज कहना चाहिए। लोकी कहने शुद्ध हिरदे नाल गुरुद्वारे जाओ, हद हो गई, कमाल दी गल, ए ते इंज होई गई गल, बई इशनान करके बाथरूम दे जाओ, इशनान करके जो है इशनान घर दे जाओ, फिर इशनान घर दे जान दी की लोड़ है जे इशनान पहले ही करने है। गुरुद्वारे जाओ ताकि अंतिशकरण शुद्ध हो, गलत है। पर लोग कहने मन में एकागर करके बाणी पढ़ो, गलत कहते हैं, बाणी पढ़ो ताकि मन एकागर हो, जप करो ताकि मन एकागर हो, गलत इतनी है। पर कहने नहीं जी, एकागर मन नाल बाणी पढ़ो मुहावरा गलत है, मन नु शुद्ध करो ते बाणी पढ़ो, ते मन नु किहदे नाल शुद्ध करिए, ते फिर बाणी पढ़न की लोड़ रह जाती है जे मन शुद्ध हो गया। साबण ते पानी की तो इस वास्ते लोड़ है ना, कपड़े की मैल कर छड़ीए ते कपड़ा निर्मल है, साफ है, स्वच्छ है, तो हुण साबण ते वह पानी की लोड़ की। तो मैं करा कुछ मुहावरे धार्मिक दुनिया दे गलत वरते जाते हैं, सानू इन कहना चाहिए हिरदा शुद्ध हो सके इस वास्ते गुरुद्वारे जाइए, बाणी इस वास्ते पढ़नी है हिरदा शुद्ध होवे। पर हुण सवाल यह पैदा होंदा है, निर्मल कर्म केड़ा है, ते धर्म ओही श्रेष्ठ है जेड़ा निर्मल कर्म दे उत्ते खड़ा है, तो जो निर्मल

शरीर नू तो लेने नाल मन ते नहीं धोता जांदा, विचार ते शुद्ध नहीं हुंदे। तन नू रोज धोंदा रहो, सुभाव नहीं बदलना। ऐसा भाई गुरुदास जी ने एक गल आखी, कहन लगे तुमने अमृत सिंचिए, तुम्मे दी वेल कोई रोज मनुख अमृत सिंचदा रहे, मिठा घोल घोल पानी विच उस दे वेल दी जड़ विच पाउंदा रहे, ते की तवक्को रखदा भी तुम्मे दी कुड़त्तन मिठास विच बदल जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच हजूर ने ख्याल दिता है, कहिंदे ने

0: रोज
1: अमृत सिंचन नाल भी निम का सहज नहीं जाता, भाव सुभाव नहीं बदलता, सहज का अखरी अर्थ सुभाव, क्योंकि जोड़ी गल सुभाव च शामिल हो जाए, जेड़ी गल सुभाव च शामिल होवे वो मनुख सहजे कर लें, ते जेड़ी गल सुभाव च शामिल ना होवे जे वो करन दी कोशिश भी करे तो वह करन लगे उसनू उचेच करनी पैंदी। इसलिए सहज लफज सुभाव नाल शामिल हुंदा, सहज सुभाए होए सो होए, सहज हमेशा उस गल विच हुंदी है, उस काम विच हुंदी है जेड़ी सुभाव च शामिल हो जाए। तो हजूर दा कहन दा भाव है कहने निम नू कोई अमृत सिंच लाए पर उनका सहज नहीं जांदा, भाव उनका सुभाव नहीं बदलता, क्योंकि निम नू अमृत तो बाहर पाया गया है ते सुभाव उनके अंदर है। इस तरह हजूर कहते ने कई गल्लां मनुख दे तन नाल सांझ रखदियां ने, बाहर नाल सांझ रखदियां ने, तन दा कपड़ा मैला हो जाए, तन मैला हो जाए, तन उपर दी चीज है, इनू मैल बाहरों लगनी, बाहरों पै खाक मिट्टी ते तन ते मैल चढ़ जाए ते उस मैल नू बाहरों पई मैल नू उतारन लई बाहर पानी दी लोड़ है, तन दा कपड़ा मैला हो जाए साबण दी जरूरत है। हजूर कहंदे ने

और ए भी नवा इतिहास लिखण लगे हां। अजे मैं समझदा मौजूदा दौर विच ते खोजियां नूं बड़ा वक्त लगेगा, कितने घर उजड़े ने, कितने बच्चे यतीम होए ने, कितनिया अबलावां दी असमत लुट्टी गई है, कितने सुहागणा दे सुहाग लुटे गए ने। ਇਹ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਲਿਸਟ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਜੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਧਰ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। और मैं ये भी अर्ज करा, अगर ये मेहनत की तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का असी सही ढंग नाल प्रचार प्रसार किया, इस देश दे अजे भी बहुत सारे ऐसे ने जो गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़ना चाहते ने। मैं महाराष्ट्र इधर छत्तीसगढ़ का इलाका जिहड़ा रायपुर का घूम के आया, छत्तीसगढ़ के इलाके कोई गालबन 96 लाख के करीब सतनामी रहिंदे ने, ते उन्हां दे मुखी मेरे को लाए ते उत्थों दे नाल एक दो सिंघां नूं भी नाल लैके आए। वो कहण लगे सी सारे सिंघ सज्जण नूं तैयार हां, 96 लाख दे करीब ने इस वक्त, जिहदे च कोई 70-80 दे करीब जिहड़े सिंघ सज्जे ने उहदे च डॉक्टर ने, इंजीनियर ने। ते मैं उन्हां कोल सुधे सिद्ध अपनी तर्क बुद्धि करके पुछ लिया, थोड़े अंदर सिख होण दा जिहड़ा जज्बा पैदा होया है, ये तुसी कोई बाणी सुनी है, कोई शब्द गुरु दा सुनिया है, कोई गुरु घर दा इतिहास पढ़ के चोट लगी है? कहण लगे नहीं, असी ब्राह्मणा दे सताए होए आ, सानू शूद्र समझदे ने, सानू अजे गुरु घर दा ते नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि गुरु घर दे शूद्र नहीं आख्या जांदा किसे नूं, असी सिख बनना। और इस तरीके नाल महाराष्ट्र दे बन जा रहे ने सिकली गर्न। मैं अर्ज करा, अगर 40 साल दे असी सही ढंग नाल प्रचार कर दे, देश की अद्धी आबादी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के खालसे होने सन, इतनी मैं अर्ज कर दें। जिम्मेवारी है हुण उन्हां दे उत्ते जिन्हां ने यह प्रचार होण नहीं दिता, कीता नहीं, उन्हां दे उत्ते जो गुरुद्वारियां दे मुखी हो के ते खिमा करनी दस्तक खटकांदे रहे पार्लियामेंट दे, गुरुद्वारियां दा ध्यान ही नहीं दिता, ख्याल ही नहीं कीता, इस पासे मेहनत ही नहीं कीती, इस पासे समय ही नहीं कढ़िया। इस देश दे अजे भी बहुत सारी धरती पई है, असी इस ढंग दा काम कर सकते हैं, बहुत वड्डे पद्धर ते काम कर सकते हैं। मेरी निगाह च भी यह सतनामी नहीं सन अद की होए, क्योंकि मैं पिंड पिंड गया इधर मध्य भारत के इलाके च, इन्हां 3-4 महीनों दे च उत्साह मेरा बहुत वधिया, ते मैनूं हैरानगी भी होई, ये लोग बेचारे छोटी बोती खेतीबाड़ी का काम करते सन, ते सिर दे उत्ते 2-2 गज के निक्के निक्के दस्तारे सजाए हुए, 2-3 सिंह मैनूं जिहड़े नाल सन उन्हां कोल मैं सुते सिद पुछे, इन्हां नूं कोल पगां नहीं ने, कहण लगे ये पग लैण दी समर्था नहीं रखते, बड़ी मुश्किल नाल अपनी उपजीविका चलांदे ने, पिंडां विच थोड़े ने जिहड़े सनपन ने उह कर लैंदे। ते फिर मेरे मन च ख्याल पैदा होया, ते लंबे तौर तरीके नाल सिलसिला चलाना पैगा, 5 ककार लखां दी तादाद विच दस्तारां चाहीदियां ने, सिंघ सजण नूं तैयार, गुरुद्वारे उत्थे कोई बणाए, हुण हर थां ते गुरुद्वारे ते सोना लाना, संगमरमर लाना मैनूं ते नहीं चंगा लगदा, भावें तुसीं औखे होवो, ओह गल वखरी है। हुण उन्हां पिंडां छोटे छोटे गुरुद्वारे बनाओ, हुण जीवदे जागदे सिक्खी दे मंदर खड़े करो, ताकि किसे दोखी दी हिम्मत ना पै सके मुल के साडे सीनियां नूं जो है गोलियां नाल छलनी करे, इस ढंग दा कोई काम करिए। इस ढंग दा उद्दम उपराला करिए, ते यही कुछ मैं उधर कलकत्ते सम्मेलन च थां थां ते कहिंदा आया, कहिंदा तो मैं बहुत पुराने समय तो सही, लेकिन बनजारियां दे बारे जो कुछ मैं आख्या लोगों ने इतनी